इलेगी लॉक तो वो चाहो तो सक्स हो गया मैं आपने लाओ चाहो कि नया नया वंग में पी वाले पेन एक पता सिला लग गया ना आप लोगों ने तो मान की बाल लंग में अम्मा के चंग में नित संग ना तमालू तलो तुम सुलाओ मिगिची तो सायक्समिन